0: IKEA presents
1: Bahadur Henry.
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम अलैकुम
3: अस्सलाम अलैकुम
2: आतिफा बार बाजर हिंदनों के देंगे तो
3: बार बाजर हिंदनों के देंगे ने तो
2: अल्हम्दुलिल्लाह बार अंगल किने तो आतिफा
3: अल्हम्दुलिल्लाह
2: अद और मैं नंग उम्मीद करे और मैं इमनेस में की बार उफायर दो हक वेगन दान कम और मैं फखर वेरे मिनिमम दो होगे खास प्रोग्राम तक आ की दे दिवस में बेत करे इंगे तो देंगे हम बार उफायर खंत तक उफायर प्रोग्राम तक इन हम जे एक तक खंत तक और मैं नंग उफायर मिनन दो होगे सब बंगले वेगन दिया हम गैमस

0: हांगार अंगार दो मेंदुल कुरी इकार गड़ फणा रहें रिपीट एरे दियगड़ तिरी हूं अधि बुद्ध दुह केरे मेंदमु पार गड़ तिरी हूं हांगार
1: हम एकनी दिवी राज्य क्याडू
2: हिमबी वैक्सीन देडोस जहुमुं हिमबी जहुम के फुरसत अनुवादी हाथिंग इंसेत्य कुड़कोद्दे अधि बाली जहुन कमुगावियस बाली का बोडोरुमुं रक्का तेरकोद्दे
3: हिमबीहिं रक्का तेरवोमत देवे वैक्सीन के तेरेगा
4: मीसल्स वैक्सीन
3: एमआर मीसल्स रुबेला वैक्सीन
4: एमएमआर मीसल्स मम्प्स रुबेला वैक्सीन हिमने
3: हिमबीहिं रक्का तेरवोमा मीसल्स वैक्सीन के देडोस फुरिहम कुरेफावाकं याकिं कुरावा
2: हिमबीहिगे अलामते फेनिजनमा लसनु कुरावा सिही फरवा होदवा
5: ए प्रोग्राम को गिना मालूम आतके ने हुन तेरे ना फोर को दिनों मा दिव्य राज्य गड़ों के निस्तनी अतुके राज्य
3: राज्य के एक ही कांकोड़ तो का आमुन्नंग अमास को हिंगा हरक ऐता कलंड
5: सरकार के एक ही इदारा तो कुंदे खिदमत तंग हो दाने फसे है को इत्ता
3: खिदमत गैजेट का कानूनी गतन शायु को फावा लियूता आवस खड़ी है को
5: आमु दिरियों मुगा कुम्भ मीह का बेनु वाने मोहिम मालु मात्ता अदुगे राज्य
3: आदित्य बुरा स्वच्छ
5: कुम्भ दोहे के हैं दोनों नुआगड़ी फने रहें
3: स्टूडियोई वगुतु
6: सादो आदे इशिंदे
7: कामुक तो आलवंडा गोवाले भी
6: सादो के हवाल को रखो मैं मस्किते वरा फरवा तेरी कमाए के रंगल कुरा मुझे फे आहरम बेलियस नुबेलियस उरिहा कमे स्तिकोरा ने वरा जिम्मा दारो कमाए को एकम फाहग को शुक्र आधा कुरम वेगन गुआली
7: शुक्रिया सर
6: ते को तंग अब दस कुरिया दे ते हिवरा फरवा तेरी कं दो कर नुलातेंगे

0: kokko ten tihen abadu no ve tetuve bala hinga bale che kala nukevi nukevi mi ha mulin hikitzenu
1: ale datta tetu ahiten nuve gahite ves nuve
2: मैं बड़ी दिहर 30 मिनट में दिहर जगह दिहर जगह दे मेरे कर्म में जिसने अंगारा

0: हांगार
1: अंगार दो हम इंद्र कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट इरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हांगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं